समाधु से ही कुपर जेते समाधु से ही कुपर जेते चितवर दी से दे आर जी कशाया फग दुई ओहो को पलेली को मचंदे फग दुयाल मचंदे फग दुयाल कैमूल पला प्रीमवार कैमूल पला प्रीमवार Coffee timpu to tasha, cine bună nu mai vrea. Coffee timpu to tasha, cine bună nu mai vrea.